0: गोर्खा जिल्लाकै विश्वासिलो सुन चाँदी पसल
1: नारायण सुन चाँदी पसल बैंक रोड बस पार्क गोर्खा। फोन नम्बर 064-20-670 मोबाइल नम्बर 98465-258।
2: चोइस एफएम 90.4 मेगाहर्ट्ज।

0: गोर्खा जिल्लाकै विश्वासिलो सुन चाँदी पसल
1: नारायण सुन चाँदी पसल बैंक रोड बस पार्क गोर्खा। फोन नम्बर 064-2470 मोबाइल नम्बर 98465-56238।
2: चोइस एफएम 90.4 मेगाहर्ज।

0: नमस्कार आमै।
1: भलो भलो हुनुपर्ने, धेरै पछि के आज त?
0: अब बालाई दमले लग्यो, माया गरेर ल्याकिरहनेले पनि छोडेर गई। दुःखमा थिए आमै।
1: ए, आज के सुनाउँछस् त?
0: दुःख केही कथा सुनाउँछु।
1: लु सुना सुना।
0: ल